रातें दो चाली कहा सौ वाली मोहाली पसंद है प्रोफाइल लो वाली रखी दो गाड़ी जो काली फिर तो वही कई हो गए साल निके निके मुंडे भोगे जाल पूछना कि देखो ताल 172 साढ़े डॉले